आपे सज करे आप जाई परखे आप तिस विजंत पाए के देखे थाप जू थाप के सुनो कहिए लाल का सब कुछ आपे आप पौड़ी वडे क्या वड़े आई।

वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਘੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी

0: के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज ते एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच ते आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

गुरु गोविंद गोविंद गुरु हर गोविंद सदा विकसंदा। ये कथन भाई गुरदास जी द्वारा उच्चारित है जो साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की महिमा बयान करता है। हाड़वदी एकम संवत 1652 विक्रमी नू गुरु की वडाली जिला श्री अमृतसर साहिब विखे पिता श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह विखे माता गंगा जी दी कुखों अवतार तारण वाले मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दल पंजन गुरसूरमे वड्डे योदे अते परउपकारी कहाए। भाई गुरदास जी पहली वार दी 48वीं पौड़ी च फरमाउंदे ने, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की अगम्मी शहादत उपरंत आप जी नू 11 साल दी आरजा विच गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने गुरगद्दी ते सुभायमान हुंदिया ही सेली टोपी उतार के दस्तार सजाई, मेरी पीरी दियां दो तलवारां पहनियां ते इंज भगती ते शक्ति दा प्रतीक स्थापित कर दिता। आप जी ने फौजां तैयार कीतियां तां जो जुल्म दा टाकरा कीता जा सके, क्योंकि धर्म दे नाल नाल नीति भी समय दी जरूरत सी। आप जी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी दी सिरजना कीती ते मनुखता नू जबर अते गुलामी तो मुक्त करवाउण वास्ते जंगां भी फतेह।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज

0: हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित किया।

0: सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी है। प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं महक पंजाबी।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत दा प्रोग्राम। अज इस प्रोग्राम विच गलबात चल रही है फिल्म दी मेरे हमदम मेरे दोस्त। दोस्तों अज इस फिल्म दी गल कर रहे हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968 दी सब तो यादगार तो रोमांटिक फिल्मों विचों एक है। फिल्म दे हीरो धर्मिंदर ते हीरोइन सन शर्मिला टैगोर। उस दौर विच ये जोड़ी ऑडियंस दी फेवरेट जोड़ियों विचों एक बनी हुई सी। फिल्म दी कहानी प्यार भरोसे परिवार ते रिश्तियां दे जज्बातों नूं बहुत ही नज़ाकत नाल पेश करदी सी। इस फिल्म की सब तो वड्डी खासियत इसका म्यूजिक सी। म्यूजिक कंपोज किया सी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने जबकि बोल लिखे सन मजरूह सुल्तानपुरी ने। प्लेबैक सिंगिंग विच मुहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ का जादू बखेरिया। कई म्यूजिक क्रिटिक्स अज भी इस साउंडट्रैक नू 1960 दे बेहतरीन साउंडट्रैकों विचों एक मनते ने। तो लो जी सुनदे हां अगला गीत इस मूवी चों मुहम्मद रफ़ी दी आवाज़ विच।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: तुसी सुन रहे हो फिल्म संगीत दा प्रोग्राम। अज असी सुन रहे हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त। एक रोचक गल ए भी है कि 1968 धर्मिंदर लई बहुत सफल साल सी। ओ उस समय रोमांस ते एक्शन दोनों तरह के रोल्स विच दर्शकां दे फेवरेट बन चुके सी। इस फिल्म विच उन्होंने एक इमोशनल ते मैच्योर किरदार निभाया जिसनों ऑडियंस ने बहुत सराया सी। शर्मिला टैगोर की खूबसूरती ते अदाकारी इस फिल्म की जान सी। उन्हां दे एलीगेंट कॉस्ट्यूम्स ते ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म नूं होर भी यादगार बना दिता सी। फैशन मैगजीन विच भी उन्हां दे लुक काफ़ी चर्चा विच रहे। अगला गीत सुनदे हां लता मंगेशकर जी दी आवाज़ विच।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी है। तुसी सुन रहे हो साडा खास गजल प्रोग्राम। मैं हाँ तुहाडी मेजबान अंजना जग्गा अज रहांगी इस महफिल च तुहाडे नाल। इस महफिल उन्हां खूबसूरत अल्फाजा दे सुरां दे नाम जो दिल दी हर धड़कन नूं महसूस करना सिखाउंदे ने। गज़ल सिर्फ एक गायकी दा रूप नहीं बल्कि ये मुहब्बत, इंतज़ार, यादा, खुशी, दर्द दे नाजुक एहसासां दी जुबान है। हर शेर अपने अंदर एक कहानी समेटता है ते हर मिसरा दिल दी किसे कोने नूं जरूर छू जांदा है। तो सुनदे हां अज दी पहली गज़ल जगजीत सिंह दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जी। हेलो फरमाइश, देखते हैं आज साढ़े पहले कॉलर कौन है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? हेलो जी, कौन बोल रहा है? लगता है आवाज़ नहीं आ रही है, साढ़े कॉलर जा चुके ने। ते उन्हां दी फरमाइश सी कि वो गाना सुनना चाहते ने, दीवाने हैं दीवानों को ना घर, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दी आवाज़ में।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश, तो देखते हैं अगले कॉलर कौन ने।
1: हेलो
0: हेलो, कौन गाल कर रहा है?
1: हेलो
0: हाँ जी जी सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है?
1: हेलो हेलो,
0: हेलो,
1: तुम्हारी
0: हाँ जी आवाज़ आ रही है?
1: आवाज आ रही मैडम थोड़ी जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, की हाल चाल?
1: नमस्कार, ठीक है मैडम जी। कहने ना जाने ये नजर क्यों उदास रहती है,
0: हाँ जी
1: न जाने से किसकी तलाश रहती है।
0: बिल्कुल जी,
1: ये जान के भी फोन कॉल लगे या ना लगे,
0: हाँ
1: फिर
0: जी,
1: भी हमें फोन लगने की आस रहती है।
0: वाह जी वाह, तुसी साडा
1: मैडम
0: प्रोग्राम रोज
1: जी
0: एंजॉय
1: कबूल
0: करते
1: करो,
0: हो।
1: शीश गुलियानी भी प्यार भरी नमस्कार, दिल खुशा मार जी तो बोल
0: बहुत
1: रहे जी।
0: बहुत
1: शुक्रिया
0: स्वागत है प्रोग्राम विच।
1: मैडम जी, मेहरबानी,
0: हाँ जी,
1: धन्यवाद।
0: होर की कर दे हो तुसी?
1: मैडम मेरा फूड सप्लीमेंट का कम है जी,
0: ठीक है जी, फिर आज केड़ा गाना सुनना
1: लोगों
0: चाहते
1: को
0: हो?
1: पतले से मोटे कर दिया जी।
0: हाँ जी
1: यही कहना चाहूंगा कि नशा तो दूर रहो
0: बिल्कुल
1: और अपनी सेहत का ख्याल रखो जी।
0: बिल्कुल जी, सारे नौजवानों नु असि यही संदेश दिन्ने आ कि नशा
1: हाँ
0: तो दूर
1: बिल्कुल
0: रहना
1: मैडम,
0: चाहिए
1: थोड़ी
0: और
1: सेहत
0: तरक्की करनी
1: तंदुरुस्त है तो
0: चाहिए
1: सब
0: है।
1: कुछ सही है, करोड़ा रुपया पे हो तो सेहत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल जी,
1: इस करके गाने सुनो तो सेहत बढ़िया रखो।
0: ठीक है जी,
1: मैडम थोड़े जी प्रोग्राम है ना, ये बीमारा भी ठीक कर दिया जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, गाने सुनो, मस्त रहो और एंजॉय
1: हाँ
0: करो, लाइफ
1: बिल्कुल
0: का यही
1: बिल्कुल जी,
0: मोटिव है।
1: किसी का बुरा ना करो, सब का भला मंगो। गाना
0: हाँ जी
1: सुना दो मैडम जी, बाबुल की गलियां एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार।
0: ठीक है जी, कोशिश कर दिया तो हड़ा ये गाना मिल जाए, अगर ये नहीं मिलता तो कोई और गाना सुना
1: हाँ
0: दिया।
1: कोई बात नहीं मैडम, और भी सुना दो।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

0: @PrasarBharati। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी प्रोग्राम चल रहा जी हैलो फरमाइश, जिथे तुसी भी सुन सकते हो अपने मनपसंद का गीत। कॉल करना है जी 0181-23-42-173। 01-81-234-2173। देखते हैं अगले कॉलर दी कॉल कि कॉल आई है। हैलो जी, कौन गल कर रहा है?
2: हाँ जी,
1: सत श्रीकाल जी,
2: स्वागत
1: है इस प्रोग्राम विच, की हाल है?
2: ठीक ठाक जी, बहुत बढ़िया जी।
1: होर की कर रहे सी?
2: ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ?
2: ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਲਾਲ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ?
2: ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ?
2: ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ।
1: ਹਾਂਜੀ,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए

की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता

0: शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तो लैके 5 बजे तक तुहाडा दोस्त तुहाडा रेडियो बेली गौरव तुहाडे नाल रहेगा और प्रोग्राम सारे सुणांगे। इसी तरह तुसीं नाल रहना बस आकाशवाणी जलंधर दे। फिलहाल समा हो गया है व्हाट्सएप ते आधारित साढ़े प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दा। जिहड़े भी स्रोतिया ने सवेरे 10 बजे तो लैके 10:30 बजे तक साढ़े फोन नंबर 9465536077 ते व्हाट्सएप कीते ने, उन्हां दे फरमाइशी जिहड़े गीत ने उह चलाए जाणगे। ते आओ फिर रब दा नां लैके शुरू करिए प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी और धमक तुहाडे दिलां दे विच भी पै रही होएगी जरूर और जिन्हां दे दिलां दे विच पै रही है उन्होंने मैसेज भी किए ने कहिंदे ने एनी सोंग शामिल कर लो जी हुण एनी सोंग तो साडे कोल है नहीं पंजाबी सोंग बड़े ने झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत मयंक ते सारा दा सारा भाटिया परिवार साडे नाल जुड़िया जी आया ना जी तुहानू आकाशवाणी दे विड़े तुहानू सारिआं नू सद्दा है और खुले दिल दे नाल स्वागत है और खुले दिल दी जदों गल आउंदी है ना तो चकला बाजार सवाना शहर तो पप्पू राजा खुश दिल इन्हां दा मैसेज जदों भी आंदा दिल खुश हो जांदा बागो बाग हो जांदा नाल इन्हां दे संगीता राणी खुश दिल पप्पू इस्माइल हसमुख लाल संजीव सुनीता बंटी आरजू महक ते पूरा दा पूरा खुश दिल परिवार खुश करदा होया बहुत बहुत शुक्रिया जी अपने मैसेज नू इसे तरह साडे तक पहुँचाते रहो दर्शन सिंह अवतार सिंह जब्बर जग सिंह चीमा पिंड अलूणा सियाणा तो नाल साढ़े माफ करना अलूणा म्याणा तो तहसील पायल तो ज़िला इन्हों का लुधियाना है और कहिंदे गीत साडा तुसी चलाना है वह भी सतेंद्र सरताज का सतेंद्र सरताज का गीत देखो असी तो चलाता है तुहाडे कहन तो पहला देखो कहिंदे दिल नूं दिल दी राह हुंदी है तुहाडे कहन तो पहला तुहाडे मैसेज तो पहला गीत चल गया जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई चंडीगढ़ तो साढ़े नाल जुड़े ने सतीश अनेजा बिमला शफाली शैफी तो मास्टर डेविस और उन्होंने गुरदास मान साहब का गीत किया से, गीत चला दिता जी देखो अज तुहाडी डिमांड तो पहला तुहाडी फरमाइश तो पहला गीत चल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए मक्कू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज कहते गीत कोई भी चला दियो जरूर जी शामिल करांगे तुहानू उस गीत दे विच कुलवंत सिंह पोतरा लवराज सिंह औलख ते पिंड इन्हां दा है भोजे के फिरोजपुर तो साढ़े नाल जुड़े ने न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा सीमा शर्मा प्रिंस शर्मा ते सारा दा सारा शर्मा परिवार वो भी जुड़ गया जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई हरजिंदर चंदा जसवीर जसी सीता ते गीता ये जुड़े ने पिंड थाणा बठिंडा तो इन्हां भी जी आया नूं आखदे आ पिंड कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो साढ़े नाल जुड़े ने वधावा सिंह बलकरन तन्नू पवी जस्सी कहिंदे ने सत श्री अकाल प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी लाइव सुन रहे हैं बहुत वधिया लगता है जदों भी गौरव जी तुसीं आंदे हो और सानू भी गीत दे विच जरूर शामिल कर लो देखो जी आपां गीत दे विच शामिल कर लिया और गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं और जिहड़ा गीत सुनाउण जा रहे हैं वह है कमल हीर दा गाया ये गीत

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: जी श्रोतियों, असीं फिर एक बार वापस हाँ, और सारे दे सारे संदेश तुहाडे लई बहुत जरूरी हुंदे ने। इहनां दे विच इनफॉर्मेशन दित्ती गई हुंदी है और नाल ही तुहाडे लई जानकारियां और जिहड़ियां तुहाडी जीवन नूं होर सुखाला बना सकदियां। फिलहाल प्रोग्राम जिहड़ा असीं सुखाला बना रहे हां, तुहाडे सारिआं दे मैसेज जिहड़े ने पढ़ के। और अगला मैसेज आ गया जी, हरजीत सिंह पाठिया, एंजल पाठिया, नवनीत पाठिया, पप्पी पाठिया, सोनू पाठिया कहिंदे ने शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं मैसेज कीता है। और ये जमशेदपुर तो साढ़े नाल जुड़े ने और इन्होंने अपनी फरमाइश भेजती है, तुहाडी फरमाइश जिहड़ी है असीं जरूर चलावांगे जी। साउथ एवेन्यू अबोर तो जसपाल भारती, वीना भारती, सुरेंद्र मनदीप, डिंपल युवराज, हैप्पी ते शिवाय ये भी जुड़ गए ने। और इन्होंने सतेंद्र सताज का गीत किया सी, चलाता जी आपां देखो तुहाडे कहण तो पहलां ही। और एक मैसेज होर आया, इन्होंने पद्मा टॉकिस नेपा नगर तो मैसेज किया है, करन वाले ने सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगला बेन ते राजेंद्र जी शाह। और सारा का सारा शाह परिवार कहता है कि सानू कोई पंजाबी गीत सुना दो। देखो जी, पंजाबी गीतों का प्रोग्राम है, जरूर सुनावांगे। मेन बाजार मंडी लदुखा फाजिलका तो साढ़े नाल जुड़े ने वरिंदर कालड़ा, रेखा कालड़ा, प्रीक्षित प्राची ते सारा का सारा कालड़ा परिवार। जी आयां नूं जी, प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी दे विच तुसीं भी धमका पाण आ गए हो। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, इन्हां ने भी अपना जिहड़ा है मैसेज करता है, मैसेज पहुँच गया साढ़े कोल, बहुत बहुत धन्नवाद। संजय टिंगिया, नमन टिंगिया ते अपार टिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश तो जुड़े ने, इन्हां नूं बहुत बहुत शुक्रिया कहिंदे आं असीं। अभिजीत गहनाकार राही, श्रीमती सरिता गहनाकार, प्रिंस एकांश, परिणिता, सिद्धांत, अर्जुन ते ये सारे दे सारे साढ़े नाल जुड़े ने। और विशाली, शैलेश, सुमित कुमार ध्वनि ये भी अलग अलग जगह तो साढ़े नाल जुड़े ने, मुंबई तो, उमर खेड़ तो, बहादुरपुर, नागपुर तो। देखो जी, अलग अलग प्रांतों तो, अलग अलग ज़िलों तो, और यही साढ़े भारत देश की निशानी है, एकता दे जिहड़ी ये सुर दे विच परोंदी है ना सानू म्यूजिक, ये साडा विरसा है जी। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू गुड्डू ये भी जुड़ गए ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और उस तो बाद सुखदेव सिंह, नरमर कौर, नरनंद कौर, नरनंदर कौर, और सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी, मास्टर मोहन, जनक नगर जलंधर तो, जलंधर ही हो आ गए हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज सानू पहुँच गया है, वह मजरू के टिले तो कमल बलूजा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा, गुड़िया, माही ते शिता ये भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज जरा इन्होंने 10 बजे किया है, इन्होंने हिंदी फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, लेकिन हिंदी फिल्मों वाला जरा हैगा प्रोग्राम उदे असी मैसेज नहीं लेंदे दोस्तों, उदे सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल्स लेंदे हैं। मैसेज जिहड़ा तुसी करना है वह पंजाबी गीतां लई करना, तुहाडा नाम है पढ़ देना, लेकिन तुसीं फरमाइश हिंदी गीत की कीती है वह नहीं चलेगी क्योंकि प्रोग्राम पंजाबी है। गोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र, शिंपा, कपिल, ईशान ते पूजा परिहार, अगली बारी पंजाबी गीत की फरमाइश करनी है, हिंदी गीत की नहीं। मुहम्मद बरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरजन लल्ला, समिरा आजमीन गुड़िया ये कहते ने आपका तहे दिल से शुक्रिया। तेलंगाना भांगीर तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जी, तुसीं मैसेज किया और पंजाबी गीत की फरमाइश की है। आदरणीय मेज़बान जी नमस्कार, कोई भी गीत सुना दिओ, थैंक यू जी। आदर्श नगर मलोड पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना ते निमान शर्मा, और जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारिआं दा। और ये सारे कहिंदे ने कि सानू गीत सुना दिओ जी, सुरजीत बिंदरखिया दा जी, तुसीं सुरजीत बिंदरखिया साहब नूं आवाज़ मारीए ते जरूर आणगे, तुहानूं अपना जिहड़ा गीत है वह जरूर सुनाणगे। ते आओ फिर उन्हां दा गाया एक गीत सुनिए,

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो
2: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

पढ़े ने, कुछ मैसेज साढ़े को छुट भी गए ने, कल जरूर पढ़ांगे। आखिरी गीत चलान जा रहे हैं जड़ा इन्हां ने फरमाइश किया है, और वो गीत है जी मनमोहन वारिस का गाया ये गीत।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और

0: जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों

0: इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तो हुण सुनदे आं भैणा दा अपना प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। वैसे बेड़े प्रोग्राम लेके है जी, असी हाजिर हाँ, यानी दो प्यारियां प्यारियां मिठियां मिठियां आवाज़ां।
0: बिल्कुल जी, ते वज़े बड़े लेके प्रभजोत भी हाजिर है, ते
1: जी
0: प्रिया दी
1: है।
0: मिठी आवाज भी हाजिर है
1: नहीं,
0: जी।
1: आवाज़ तो तुहाडी भी बिल्कुल मिठी है। भी असी सुहानी है ना, जो भी होवे, चाह इन्नी मिठी पीने हैं ना, ते
0: जी
1: आवाज़ जिहड़ी है साडी कुदरतन मिठी हो ही जांदी है।
0: बिल्कुल जी। और असी उम्मीद करते हाँ कि साडियां भैणां भी मिठी चाह पीनियां होनियां, पर जिन्हां नूं थोड़ी जी डायबिटीज़ है वो
1: हाँ।
0: थोड़ा जा अपना अवॉइड कर लैन, थोड़ा जा परहेज़ कर लैन।
1: जी
0: अच्छा प्रिया, अज एक बहुत ही वड्डा दिन है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: जी
0: अज मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब
1: जी
0: है, और असी सारे ही मिल के उन्हां नूं प्रणाम करते हाँ, और
1: जी
0: सारे सुनने वाले नूं बधाई भी दिंदे हाँ,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अज उन्हां दा प्रकाश पुरब है।
1: जी
0: देखो गुरु साहब का जोड़ा जन्म है वो माता गंगा जी दे घर होया
1: हाँ
0: सी, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल
0: और माता गंगा जी नू बाबा बुड्ढा जी तो वर मिला सी कि तुहाडे घर ऐसा जोधा पैदा होएगा जेड़ा के सारे जड़े

0: बिल्कुल, बस असं याद ही करवाना है कि
1: बिल्कुल
0: बस स्कूल दिया छुट्टियां मुक रही ने और असी हुन तैयारी कर लेनी है अज दी अज ही, है ना।
1: बिल्कुल, तो याद तो मैनू ये चीज याद आई
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ.
1: अज मंगलवार नूं जिंदगी दे विच असी केड़ियां उडारियां साडियां जिहड़ी सवानियां ने उह भरदियां ने ते भर
0: हाँ
1: सकदियां ने,
0: जी
1: उहदी गल आपां हमेशा करदे आ किसे बहुत ही खूबसूरत जिही जिहड़ी औरत हुंदी है, लड़की हुंदी है, उस दे नाल
0: जी
1: रूबरू कराने आ। ते उडारियां दे फेर विच अज नवनूर कौर जी दे नाल रूबरू कराइए आपां।
0: जी बिल्कुल कराइए फिर।
1: जी
2: उडारियां प्रोग्राम च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। अज दे इस प्रोग्राम च जिन्हां दी उडारी असीं मापणी है ना, जिन्हां दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाउणी है, उहनां दा नाम है नवनूर कौर। नवनूर ने MBA कीती है, बैंक विच सीनियर मैनेजर भी सन, पर अज दे युग विच जदों सारे नौकरी दी भाल करदे ने, कहिंदे ने कि चंगी नौकरी मिल जाए ते असीं सुरखरू हो जाईए, पर नवनूर ने बैंक दी नौकरी छड्ड के, सीनियर मैनेजर दी नौकरी छड्ड के बिजनेस प्रैफर कीता। बिजनेस कहदा फूड प्रोसैसिंग दा, खास तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता वधाउण दे नाल जुड़े हुए ने। नवनूर, बहुत बहुत स्वागत है जी आयां नूं उडारियां प्रोग्राम दे विच।
3: थैंक यू।
2: MBA कीती, माँ बाप की भी ख्वाहिश हुंदी है एक अच्छे अहुदे ते साडी बेटी पहुँचेगी, अपनी भी इच्छा हुंदी है, सीनियर बैंक मैनेजर भी रहे तुसीं, पर किवें एकदम मन तब्दील कर लिया कि मैं उत्पादों की गुणवत्ता वधाउण दे नाल जुड़ना या फूड प्रोसैसिंग दे नाल जुड़ना?
3: मेरे स्टार्टिंग तो ही मेरा जेड़ा ड्रीम सिगा वो सिगा कि कुछ अपना स्टार्ट करना है, कुछ फूड एंड बेवरेजेस विच करना है। तो क्योंकि मैं पंजाब तो बिलोंग करती हाँ तो एग्रीकल्चर हार्टलैंड बोलते हैं इन इंडिया का, तो कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड ही मैं करना चाहती सी। दो मैं MBA की है, तो उस तो बाद मैं 3 साल जॉब भी की है, पर जेड़ा मेरा मन सी वो हमेशा आही बोलता सी कि खुद का कुछ करना चाहिए। तो मेरी फैमिली विच सारे ही सर्विस बैकग्राउंड तो बिलोंग करते हैं, तो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हाँ, तो इस कारण मैं सोचा कि इधर कुछ ट्राई किया जाए।
2: अच्छा चलो, नाल ही गल जुड़ जाती है, जदों तुसी कहा कि मैं बैंक मैनेजर दी, सीनियर बैंक मैनेजर दी नौकरी छड़ के बिजनेस वाल जाना, किदां दा वतीरा सी घरदिआं दा?
3: घर दे काफ़ी सपोर्टिव रहे है मेरे सारे डिसीजनस ली, बट जिवें हुंदा है क्योंकि एक तानू काफ़ी अच्छी इनकम मिल रही होंदी है, हर महीने तुहाडे कोल पैसे आ रहे होंदे है, पर जब तुसी बिजनेस स्टार्ट करना होंदा है तो हमेशा पैसे स्टार्टिंग च लगते ही है, तो सारिया सेविंग्स तुहाडियां बिजनेस नू ही ग्रो करन च लगती है, तो हमेशा एविंग सी कि पैरेलली पहले स्टार्ट करके फिर असी फुल टाइम करिए, ता इस कारण एवें ट्राई किया कि पहले पैरेलली मैं थोड़ा अपने बिजनेस वाल उदी रिसर्च करा ते उत तो बाद फिर मैं फुल टाइम करा, ता हुन लास्ट 10 मंथ्स तो मैं फुल टाइम कर रही हाँ जैगर की।
2: अच्छा नवनूर, इदां जदों MBA करदे हो तो बिल्कुल ही वक्रा फील्ड है, जदों आपां फूड प्रोसैसिंग वाले ने बिल्कुल ही वक्रा फील्ड है, इह दोवें चीज़ां किवें रलगड कर लईआं?
3: MBA जिवें उहनूं बोलदे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ता मेरा जेड़ा इनिशियल फील्ड सीगा जेड़ी मेरी जॉब सी वो सेल्स जॉब ही सीगी, ता वो फाइनेंशियल सर्विसेज सी, तो काफ़ी ही अलग फील्ड है, पर जिवें मेरा इंटरेस्ट हमेशा तो ही एदे विच सीगा कि कुछ फूड एंड बेवरेजेस विच करना है ते कुछ एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज करनी है, क्योंकि जेड़े मेरे फादर है वह भी PAU नाल एसोसीएटड है जेड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इस कारण ओदे वाल फिर ध्यान रहिंदा ही सी, ता जिवें मेरी मदर है वो बहुत अच्छे कुक है, तो जब असी रेसिपीज भी डिवेलप करते सी तो मतलब पूरा फैमिली का काफ़ी योगदान रहिंदा है, तो इस कारण फिर इधर वाल असी चले गए।
2: कोई ट्रेनिंग वगैरह लई?
3: ट्रेनिंग मैं मतलब स्टार्टिंग में जद कीता सी ता फिर रिसर्च या मैं लिटरेचर पढ़िया कि शुगर केन किवें ग्रो हुंदी है, केड़िया केड़िया वराइटीज़ पंजाब विच ग्रो हुंदी है या महाराष्ट्र विच केड़िया ग्रो हुंदी है, कि सानू किवें उन्नू प्रोटेक्ट करना चाहिए शुगर केन नू, फिर उस तो बाद मैं फार्मर्स नाल इंटरैक्ट कीता कि ओ क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज है तो इस कारण वो बैटर दस सकते हैं, तो इसी टाइप की मैं ट्रेनिंग की, फॉर्मल एजुकेशन नहीं एच ली बट मैं प्रैक्टिकली जाके लोगों गल्ला की लिटरेचर पढ़िया।
2: अच्छा, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग थावां जाके स्टॉल भी लगाते हैं, बहुत सारे किसान मेले भी लगते हैं, तो भी स्टॉल लगाने का मौका मिले, किसान मेलिया जाने का मौका मिले?
3: हाँ जी, स्टार्टिंग विच क्योंकि नवा प्रोडक्ट है बिल्कुल, जिवें मैं दस्या कि असी वैल्यू एडिशन्स करते हैं गुड़ शक्कर विच, तो बिल्कुल

0: एक टेस्ट पैलेट ली नवी चीज है,
1: हम्म,
0: ता हमेशा टेस्ट करा के या सैंपलिंग करा के ही असी लोका तो रिव्यूज लैंदे सी, ता उहदे लई सानू बहुत सारे स्टॉल्स लगाने पए। स्टार्टिंग विच असी सोसाइटीज विच स्टॉल्स लगाए, जिवें किसान मेले हुंदे सी उत्थे स्टॉल्स लगाए, एग्जीबिशन हुंदियां सी कि असी सैंपलिंग वध तो वध कराइए कि सानू मार्केट पता चले कि इस प्रोडक्ट दी एक्चुअल विच डिमांड हैगी है, लोकां नू पसंद आ रहा या नहीं। ता उहदे तो बाद सानू पता चलिया कि जद असी टेस्टिंग कराने हैं तां 70% जिहड़े लोग है वो बाय करके जाते हैं कि उन्होंने इन्ना टेस्टी लगता है
1: अच्छा
0: प्रोडक्ट।
1: बाकी जिहड़े होर भी स्टॉल लगते ने, बाकी होर भी गुड़ शक्कर चीज़ां वेचते ने, तुहाडा उहनां तों डिफरेंट किवें आ?
0: जिवें मतलब 5-6 साल पहले असी सब ने मेरी फैमिली विच असी चीनी छड्डती सी, तां साडी जैगर केन दा विजन भी आया कि असी रिफाइंड शुगर टू शिफ्ट कराना चाहते हैं जैगरी विच। तां इस कारण मैं बहुत सारे प्लांट्स ते भी गई जैगरी जिहड़े मैन्युफैक्चर करते सी, बट वो हाइजीनिक नहीं सीगे या केमिकल्स पा के उन्हां दी प्रोसैसिंग हुंदी सी, उन्हां दी क्लीनिंग हुंदी सी। तां इस कारण फिर मैं अपने जिहड़े को फाउंडर है गुरदासपुर तो है, तां उन्हां दा यूनिट देखिया, तां उन्हां नाल फिर मैं मिली, तां उत्थे फिर असी प्रोडक्शन स्टार्ट कीती। तां उन्हां दा जिहड़ा यूनिट है बहुत ही हाइजीनिक है, ते जिवें जनरली केमिकल्स पाउंदे है सोडियम बायकार्बोनेट नाल सफाई हुंदी है जिहड़ा शुगर केन जूस हुंदा है,
1: जी
0: पर साडे जिहड़ी जैगरी है वो ओकरा रूट्स नाल, जिहड़ी पिंडियां दियां रूट्स हुंदी है उहदे नाल सफाई हुंदी है। तां इस तरीके नाल असी क्वालिटी बहुत इंश्योर करदे हां कि टॉप नॉच रहे, ते इस तरह असी डिफरेंट आ मार्केट तो कि कंसिस्टेंसी ते क्वालिटी विच।
1: अच्छा नवनूर, ये जिहड़ियां चीज़ां तुसीं गणाईयां, जिद्दां तुसीं कहिंदे भिंडियां दियां नाल असीं सफाई करदे हां शुगर केन दे जूस दी, यानी गन्ने दे रस दी, है
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: ते थोड़ी कीमत भी वध जांदी होएगी,
0: हाँ जी
1: ते आम इक गाहक जदों जांदा ते ओह ये देखदा कि सस्ता किधर मिल रहा मैनूं,
0: हाँ जी
1: ते हुण ते नाल नाल गुणवत्ता वल वी जा रहे ने, सस्ता किधर है ते वधिया किधर है, तुहानूं इदां दा कदी सामना करना पिया कि लोकी कहिंदे ये तो बहुत महंगा है?
0: हाँ जी, क्योंकि साडे प्रोडक्ट्स क्योंकि थोड़ी प्रीमियम रेंज आ जाती है, क्योंकि असी पैकेजिंग भी बिल्कुल मॉडर्न आउटलुक नाल कीती है कि ना कि सिर्फ जिवें बोलते हैं कि बुजुर्ग ही ज़्यादा खाते हैं
1: हाँ
0: गुड़
1: जी
0: शक्कर,
1: जी
0: ते असी चाहते हैं कि यंगस्टर्स भी ट्राई करन आ चीज़, क्योंकि आ हेल्थली बहुत अच्छी है। ता वो कभी कभी फेस हुंदा है कि एक्सपेंसिव है, बट जदों टेस्ट करते हैं तो उन्होंने लगता है कि ये काफ़ी चीज़ा हेल्थली बेनिफिट है, तो इस कारण वो फिर रेगुलरली बाय करन लग जाते हैं कस्टमर्स।
1: तुसीं गलबात करदे करदे दसा कि शक्कर दे अलग अलग स्वाद ने,
0: हाँ जी
1: गुड़ दे अलग अलग स्वाद ने, वो भला केड़े केड़े स्वाद ने?
0: असी जिवें मैं तुहानूं दस्या कि चाहते हैं कि सारे इस चीज़ नू खाएं अपनाएं, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आयरन रिच है बहुत, क्योंकि अनीमिया भी हर एक मतलब हर सेकेंड लेडी नू है इंडिया विच, ता इस कारण काफ़ी हेल्प करता है जैगरी उसनों। तो असी वैल्यू एडिशन इस तरीके नाल कीती हैं कि ये विच होर न्यूट्रिशनल वैल्यू आए ते होर टेस्टी बने ताकि सारे लोग खा पाए। तो साढ़े कोल अलग अलग फ्लेवर्स है, जिवें ग्रेनोला अजकल आंदा है जिहड़ा ब्रेकफास्ट सीरियल हुंदा, वो जनरली शुगर कोटिंग वाला हुंदा है, असी उहदे ते गुड़ दी कोटिंग कीती हुई है, ते असी मिल्क एनहेंसर बनाया है जिवें आमंड इलायची जैगरी, ता वो बच्चे दुध विच पा के पी सकते हैं रादर दैन के वो जेड़े पैकेटेड जिधर सिर्फ कोको पाउडर ते रिफाइंड शुगर हुंदी है, ते वो गुड़ वाला मिल्क एनहेंसर भी यूज कर सकते
1: ये
0: हैं।
1: मतलब बच्चे भी तुहाडे स्टॉल ते आ के बड़े खुश हुंदे होणगे।
0: हाँ जी सानू साडे कस्टमर्स ने ही दस्या कि जेड़ा साडा कोकोनट जैगरी है बच्चे जैम दी जगह वो कोकोनट जैगरी लगा के खांदे हैं हुन ब्रेड ते अपनी परौंठी ते।
1: वाह वाह, इन्नियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वाली नवनूर दा जन्म कित्थे होया भला बई?
0: मैं लुधियाने विच ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हाँ, फिर मैं अपनी MBA IMT गाजियाबाद तो की थी, उस तो बाद फिर मैं 1 साल गुड़गांव विच जॉब की थी, फिर मैं लुधियाने विच ही कंटिन्यू
1: अच्छा
0: किया।
1: नवनूर, तुसीं क्या कि तुहाडे पूरे परिवारक मैंबरां ने पूरा सहयोग दित्ता, तुहाडे हर फैसले दे नाल चले हो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
0: हाँ जी
1: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਾਂਟ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹੈ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕੋਈ?
0: इवें डर तां हमेशा थोड़ा लगता ही है, क्योंकि सानू मतलब असी सिर्फ अपने हार्डवर्क पुट इन कर सकते हैं, सानू आ नहीं पता कि असी सक्सेसफुल होवांगे या नहीं।

0: बट हमेशा फैमिली दी बैकिंग जरूर रहती है कि अगर जिवें क्योंकि बहुत सारे लो फेजेस भी आते हैं कि हमेशा अच्छा अच्छा ही सब कुछ नहीं चलता, बट फैमिली दी बैकिंग हमेशा ही रहती है मेरे को कि अगर कुछ भी गलत होंदा है तो सब तो पहले मैं फैमिली नू ही दस दिया, तो इवें का कदी नहीं लग गया कि सोचेंगे मेरे घर वाले अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो
1: अच्छा,
0: हमेशा ही
1: नमनूर
0: है।
1: भैणा भरावां चो किनवा नंबर है तुहाडा?
0: मैं फर्स्ट बॉर्न किड हाँ
1: जी, वड्डे हो
0: जी
1: तुसीं,
0: हाँ
1: वड्डे
0: जी
1: लाडले
0: वड़े
1: भी हुंदे ने थोड़े,
0: हाँ
1: ते
0: जी
1: फिर छोटियां ते रोब भी पै जांदा थोड़ा जिहा।
0: हाँ जी हाँ
1: पिया
0: जी
1: छोटे ते रोब कदी?
0: नहीं वो सुनदा नहीं है मेरी गल, मेरा
1: ओ,
0: है छोटा ब्रदर
1: ओ तुहाडे ते रोब पा जांदा है।
0: हाँ जी।
1: तुहाडे होर की शौक ने?
0: होर मैं लिखदी काफ़ी हाँ, मतलब जिवें रोज़ जर्नलिंग करते हैं आपा कि अज दे दिन च की होया, मैनू लिखना
1: डायरी लिखन दी
0: हाँ
1: आदत
0: जी
1: है।
0: डायरी लिखन दी आदत है, ते मैं पेंटिंग भी कर दियां, ते मैं बुक्स भी रीड करना स्टार्ट कीता है कि वो एक तानू अलग डायमेंशन देंदा है लाइफ बारे, ता मेरे अलग अलग शौक है।
1: ब्लॉगिंग च भी तुहाडा रुझान है?
0: नहीं मैं ब्लॉगिंग नहीं कर दियां
1: ब्लॉगिंग नहीं करदे?
0: हाँ जी
1: कविताओं च रुझान है तुहाडा?
0: हाँ जी मैं कवितावां पहले लिखती हुंदी सी, हुन मैं बंद कीता होया है, बट
1: जी
0: हाँ जी मैं वो रीड भी करदी हाँ पोएट्री कदी कदी, ते लिखदी भी हाँ कदी
1: जी
0: कदी
1: कविताएं तुसी बहुत पहला लिखिया,
0: हाँ जी।
1: चंगा लगता लिखण नूं। ते हुण तुहाडी जिहड़ी दिनचर्या है, डेली शेड्यूल है, की है?
0: हुन जिवें मैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही करना होंदा, हजे साडा ऑफिस सेटअप नहीं है, तां मैं सवेरे उठ के सब तो पहले लिखदी हाँ अपने दिन बारे जिहड़ा पिछले दिन होया होंदा, फिर मैं मेडिटेशन करदी हाँ, उस तो बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दिनी हाँ, तां क्योंकि इनिशियल फेजेस विच तानू सब कुछ खुद ही करना पैंदा एक बिजनेस विच, मतलब तानू सारियां हैट्स खुद वेयर करनियां पैंदियां, मार्केटिंग होए या फाइनेंस होए या एचआर होए, तुसी हायरिंग करनी है, सब कुछ तानू खुद करना पैंदा, तां वो काफी टाइम लग जांदा है उहदे च, तां इस कारण मतलब मैनू लगता है कि मैं दो शिफ्टां च काम करदी हां,
1: अच्छा।
0: कि मैं ब्रेक ले लैनी हां शामी, मैं योगा करदी हां, ते मैं डिनर करके फिर मैं दोबारा काम करना स्टार्ट कर देनी हां, तां एवें मेरा दिन पूरा जांदा है
1: जी,
0: हाँ जी।
1: ते रसोई च जाण दे भी शौकीन हैगे हो?
0: मैं अपना ब्रेकफास्ट ते डिनर खुद बनानी हां हाँ
1: अच्छा,
0: जी हाँ जी
1: बाकी परिवारक मेंबरां लई?
0: हाँ जी, मैं सवेरे अपने लिए ते अपनी दादी माँ लिए ब्रेकफास्ट बनानी है, ते शामी अपने मम्मा दादी माँ ते मेरे लिए डिनर बनानी है, क्योंकि असी
1: अच्छा
0: सेम तरीके दा खाना खाने हैं
1: जी जी
0: राती
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: यानी कि तुसी रसोई च जान दे शौकीन हैगे हो,
0: हाँ जी हाँ
1: साग
0: जी
1: भी बना लैंदे हो? साग नहीं
0: नहीं
1: आंदा? अच्छा, तुहाडी कोई टीम बनी हुई है कि तुसी इकल्ले ही होली सोली कर रहे हो, देख रहे हो इस बिजनेस नूं?
0: हजे मैं ते मेरे को फाउंडर कौशल सिंह हाँ, ते साडे सेल्स फोर्स असी हुने ट्राई सिटी च लॉन्च कीता है चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला, तां उत्थे साडे कोल दो टीम मेंबर्स है सेल्स विच, ते साडा जेहड़ा पैकिंग फैसिलिटी है वो ऑल वुमेन लेड है, क्योंकि असी वुमेन एम्पावरमेंट ते भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं कि लेडीज़ नू असी अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तां इस हिसाब नाल साडे 7 to 8 वर्किंग मेंबर्स है
1: यानी कि महिला सशक्तिकरण के नाल भी तुसी जुड़े हुए हो,
0: हाँ
1: एक
0: जी
1: टीम तैयार की हुई है जिस औरतां ही तुसी अगे लैके आनियां ने।
0: हाँ जी हाँ
1: कभी
0: जी
1: इदां भी होया कि बहुत सारे ऑर्डर इकट्ठे आ गए, बनाउण च दिक्कत हुई, पूरा करण च दिक्कत हुई, या बहुत मेहनत करनी पई, होया कभी इदां?
0: हाँ जी एवें हुंदा है, क्योंकि हमेशा मतलब प्रोडक्शन उस क्योंकि एक नेचुरल आइटम है कि हुन जिवें हार्वेस्टिंग सीजन है, पर इन्नियां बारिशां पै गईयां कि असी हार्वेस्ट गन्ने नू टाइम ते नहीं कर पाए, ते ऑर्डर साडे कोल ऑलरेडी सीगे, तां वो प्रेशर भी बिल्डअप हो जांदा है कदी कदी, बट क्योंकि आ नेचुरल आइटम है तां एवें दे फिर फ्लक्चुएशंस नू सानू ध्यान विच रखना ही पैंदा है
1: जी, तुहाडे कोलों ऑनलाइन शॉपिंग भी करदे ने, यानी कि भारत दे दूजे हिस्सों चों भी, इंडिया दे दूसरे हिस्सों चों भी शॉपिंग करदे ने ऑनलाइन?
0: हाँ जी। असी अपनी वेबसाइट ते jagarkane.com ते साढ़े सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अमेजोन ते भी अवेलेबल है, तो असी हुन एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कीता है, इस मंथ विच असी कैनेडा विच भी साढ़े प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे, तो असी UAE भी एक्सपोर्ट करते हाँ
1: जी,
0: हाँ जी
1: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਗੁੜ, ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
0: ਹਾਂ
1: ਅੱਜ
0: ਜੀ
1: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
0: ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ

0: जिहड़ी होंदी है कि एक लड़का ते एक लड़की विच कि वो दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स है ते दोनों नू इक्वली ट्रीट करना चाहिदा है कि अगर कोई लड़की भी अगे वधना चाहती है ते उन्हें पूरी सपोर्ट देनी चाहिए है क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इंडिया दी लेडीज़ विच ते बहुत टैलेंटेड होंदी है। तो मैं आही कहना चाहूँगी कि जिन्ना तुसी सपोर्ट लड़कियां नू करदे हो उन्ना ही लड़कियां नू भी करो ता वो तानू बल्कि ज़्यादा फ्रूट
1: यानी
0: देंगियां।
1: रिजल्ट ज्यादा वधिया
0: हाँ जी
1: देणगियां
0: हाँ
1: भविख
0: जी
1: दियां की योजनावां ने।
0: असी हजे जिवें सानू फंडिंग दा असी ट्राई कर रहे हैं कि असी इन्वेस्टमेंट्स लैके आइए अपने बिजनेस विच क्योंकि असी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं ते अल्टीमेटली असी 5 सालों विच 100 करोड़ दी फर्म बनाना चाहते हैं कि असी 100 करोड़ दा रेवेन्यू टच कर जाइए।
1: भावी पति किहो जिहा सोचिया होया, किहो जिहा मिले?
0: शादी बारे मतलब एवं ही है कि कोई अगर राइट परसन मिले ता फिर ठीक है बट मतलब सपोर्टिव ते
1: जी
0: सब कुछ उस हिसाब नाल कि जो इक्वालिटी विच भी बिलीव करदा होए ते सब कुछ मतलब अच्छा होए ता फिर ही।
1: क्या बात है नवनूर, तुहाडे नाल गल्लां बातां करके बहुत मजा आया। दुआ करदे हां जिहड़ियां तुहाडियां भविख दियां योजनावां ने, जो तुसीं उम्मीदां रखियां होईयां ने, सारियां साकार हो जाण, तुहानूं सफलता मिले, तुहाडा गुड़ तुहाडी शक्कर दूर दूर तक जावे, इन्ने ऑर्डर आण कि तुहाडे लई भुगताने भी औखे हो जाण। बहुत बहुत शुक्रिया उडारियां प्रोग्राम साडे मेहमान बणन लई।
0: थैंक यू जी।
2: चलो अज जी उडारियां दे विच नवनूर जी दे नाल असी गलबात कीती भी, असी तां सुनी आ गलबात,
1: हाँ
2: गलबात तां कीती सीगी सुखजीत जी ने,
3: बिल्कुल जी। और देखो वाकई ही इन्हां ने जिहड़ा स्टार्टअप कंपनी शुरू कीती है वाकई ही एक गुड़ दे नाल जिहड़ी शक्कर दे नाल शुरू कीती है और बहुत सारे जिहड़े चीज़ां ने इह शक्कर दे नाल बना रहे ने। और देखो असीं उम्मीद करदे हां कि साडे सुनन वालियां नूं पसंद आई होएगी
2: बिल्कुल
3: और ओह वी कुछ ना कुछ जिहड़े बच्चियां नूं सिखाणगे।
2: बिल्कुल
3: देखो हाथ विच हुनर जे है तां ओहनूं इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल। और तुसीं देखो नवनूर जी जिन्हां दी कोई इहो जी बैकग्राउंड नहीं सीगी, घर दे विच कदी किसी ने बिजनेस नहीं कीता, और आप भी नौकरी करके नौकरी छड के बिजनेस करन दा जिहड़ा है ओह सोचिया, बहुत हिम्मत भी चाहीदी है और इन्नी वड्डी उडारी भरन नूं सपोर्ट भी परिवार दा पूरा चाहीदा है, मिलिया
3: बिल्कुल
2: भी है उहनां नूं।
3: बिल्कुल जी। ते फिर इहनां नूं भी गीत सुणाइए ते आप
2: जी
3: भी सुणिए
2: बिल्कुल
3: जी।

0: इमोशंस जुड़े हुए ने। इसे करके तो बई इशक के प्रतीक इस छले का मानवीकरण असी कीता है, तो इसनू वार वार संबोधित करते हुए असी अपने जिहड़े आम लोग होंदे ने ना, जिहड़ी पब्लिक होंदी है, उन्हां दे इमोशन नू, उन्हां दीआं चावां नू, उन्हां दे सदरां नू, खुशियां नू, गम नू, गिले शिकवियां नू छले दे नाल जोड़ के कई वारी सुनाया। बिल्कुल इस गीत दे विच वी इसदी झलक मिलदी है
1: जी, मिलदी है। और सुनदिआं असी एक गीत

0: जी जी गीत तां हो गया, पर ये छल्ला जेड़ा है ना, ये साडे तक या साडी जिंदगी दा हिस्सा किते एवें नहीं बन गया वैसे।
1: हाँ,
0: हाँ
1: अच्छा।
0: प्रभजोत जी, इदे पिछे ना एक बड़ी दुख भरी जी कहानी है वैसे
1: ओहो, वो तां मैनूं लग ही रहा है कि तुसीं
0: तां।
1: जिहड़ी सुनाण लगे हो दुख भरी होएगी। चलो
0: जी,
1: जी।
0: छल्ला ना दरअसल प्यो पुत्तर दी दास्तान है, जिस बारे किसी ने जानने दी कोशिश ही नहीं मैनूं लगदा कीती हजे तक, ते मैनूं लग्या भी बस दे वेड़े दे जरिए जे अज मौका

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਤੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने

0: करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं

0: शक्ति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। तो हुण तुहानूं असीं अपने बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा एक वेरवा देंदे चलिए।

प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीरा लई। और फौजी वीरो एक होर गीत तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं जिन्हों गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक होरां ने। जी हाँ, कुमार सानू अलका याग्निक की ये आवाज़ और ये जिहड़ा गीत है ना, इस गीत नूं उस जनरेशन ने बहुत प्यार दिता है। ना कि सिर्फ उस जनरेशन ने बल्कि हर जनरेशन जदों ये गीत सुनती है ना तो वह हमेशा ही प्यार देती है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत जिन्हों लिखिया समीर ने और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। और ये भी गीत फौजी वीरो तुहाडी जिंदगी दे नाल जुड़दा जरूर है। किद्दां जुड़दा है, जदों तुसीं ये गीत सुनोगे ये तुहानूं पता लग जाएगा। तो आओ सुनते हैं ये गीत।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी फौजी वीरां लई और एक छोटा जा संदेश, संदेश तो बाद फिर जुड़ांगे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसी नाल सांझी ना करो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।

जी फौजी वीरो, विनोद राठौर दा गाया ये गीत और जिदे नाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री च एंट्री हुई सी शाहरुख खान होरां दी। और एक होर गीत सुनान जा रहे हैं, ये भी गीत जड़ा है शाहरुख खान होरां ते ही फिल्माया गया है। और ये गीत जदों भी वजदा है ना तो दिल दे करदा है कि रेलगड्डी होवे और आपां उहदे विच होईए। वैसे इस गीत के उपर तो शाहरुख खान रेलगड्डी के उपर सी, पर ओ करना कानूनी जुर्म है, वह तुसी करना नहीं किसी ने। लेकिन ये गीत की जड़ी रूह है वह यही है कि सुखविंदर सिंह की आवाज़ है, नाल सपना अवस्थी की आवाज़ है और एक रूहानी जी म्यूजिक नूं तुसी देखते हो इस फिल्म इस गीत दे विच। इस गीत की जी मैं गल कर रहा, इनू लिया गया फिल्म दिल से 1998 के आई सी। इनू कंपोज किया सी ए आर रहमान ने, लिखा सी गुलजार साहब ने और गाया सुखविंदर सिंह और सब

अवस्थी ने, और इसे गीत दे नाल ही बहुत प्रसिद्धि भी मिली सी सुखविंदर सिंह होरां नूं। वो पहले आ चुके से जरूर, और पंजाबी सिंगर ने, जलंधर तो उन्हां दा राबता बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो जलंधर की गल करा या मैं दूरदर्शन की गल करा, बहुत गाया उन्होंने। तो फिल्म इंडस्ट्री में खास करके मुंबई की हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत छाप छड़ी, और ये गीत उन्हां लिए भी बहुत दिलों करीब है, और क्योंकि ये वो पहले गीतां में सी जिन्होंने जिन्हों गा के सुखविंदर सिंह द ग्रेट सुखविंदर सिंह बने। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: ਜੀ ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन

0: पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा, मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग,

0: समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के

0: स्मरण में मनाया जाता है।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का ए जलंधर केंद्र है। तो आओ हुण सुनदे हां लोक गीतां ते आधारित साडा प्रोग्राम रंगली धरती। इहदे विच अज जोगा सिंह लोगी कविशर ते उहनां दे साथी कविशरी सुणांगे। और प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत दे विच प्रसंग जन्म श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, इहदे उत्ते कविश्री जिहड़ी है जोगा सिंह जोगी ते उन्हां दे साथी लैके आ रहे हैं।

0: दुनिया दे उपमा हो जू गंगा दे लाल दी बोले ओ ब्रह्म ज्ञानी।
1: गंगा बन चकया बाबे प्रेम से छकया बाबे बोले बुर ब्रह्म ज्ञानी गोविंद पधारेगा मारे नू जीवन बख्शु जाबर नू मारेगा होवेगा बली सूरमा
0: दर्शन नू लोगे।

0: सोते अपराध करत है जेते जननी चित ना ल्यावे पुत्र दी फांसी दा फंदा खोए अपने गल पावे
1: दुल्ले

केंद्रीय खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज इस गल ते जोर दिता है कि खेतीबाड़ी खेतर दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। भारत ने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF नूं दहशतगर्दी वित्त पोषण अते मनी लॉन्डरिंग खिलाफ आलमी लड़ाई का एक लाजमी थम दसदियां अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। भारत समेत अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ने अफगानिस्तान विच पाकिस्तान फौज वालों किए गए हवाई हमलों की सख्त निंदा की है। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अज कहा है कि भारतीय फौज नूं अपनी ताकत किसी एक व्यक्ति तो नहीं सगो अपने सैनिकां कमांडरां साबका सैनिकां उन्हां दे परिवारां अते देश दे नागरिकां दे अटुट विश्वास तो मिलती है। वह अज अपनी सेवा मुक्ति मौके बोल रहे सन। सेहत मंत्रालय ने सारे केंद्रीय सरकारी विभागों अते संस्थावां नूं आवारा कुत्तियां दे हमलियां संबंधी सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देशों की पालना नूं अज तों यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे दे हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाउण लई इस साल दे अखीर तक 7000 किलोमीटर होर पाइपलाइनां बिछाउण दा ऐलान कीता है। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सीनियर पुलिस अधिकारियों नूं युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम नूं होर तेज करन दे निर्देश दित्ते। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पुरब अज पूरी धार्मिक श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। श्री पंजाब रणजीत सिंह दी बरसी मौके समागम च शामिल होने लई पाकिस्तान गया श्रद्धालुआं दा जत्था अज भारत वापस परत आया है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों विच कल तो तेज हवावां नाल भारी मीह पैण दी संभावना है।

प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी फिल्मी गीत, और अगला जिहड़ा गीत तुहानू सुनाउण जा रहे हैं उहनू गाया है मुहम्मद रफ़ी ते नाल उहनां दे मिन्नू परशोत्तम होरां ने, ते फिल्म है पगड़ी संभाल जट्टा। तो आओ सुनते हैं ये गीत है।

प्रोग्राम चलेगा जी पंजाबी फिल्म म्यूजिक, और अगला गीत सुनान जा रहे हो तो जसविंदर नरूला और उन्हां दे नाल ने योगराज सिंह, इन्हां दे गाए हुई बोलियां ने फिल्म नॉटी जट्स तो। चलो आओ जी फिर सुनते हैं प्रोग्राम दा आखिरी गीत।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच पगवाना। ए कथन सर्वोच्च शक्ति सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दी उस्तत विच उचारित ने, क्योंकि उस प्रभु दी महिमा जानन वाला ही उस प्रभु दे गुण गायन कर सकता है। जेकर कोई उस दे गुण गायन करदा भी है तां ते फिर उस प्रभु दी कृपा सदका उस दी बख्शी हुई जिंद जान प्राण करके ही उस दे गुण गायन करदा है। वरना असी जीव किस तरह उस प्रभु दे गुणा नूं चेते कर सकते हाँ। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे। बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सदा दयालु है, ओ दातां वंडदिया थकदा नहीं, ओ नित नवियां दातां अपने प्यारियां नूं बिना किसे वितकरे दे प्रदान करदा है। इसे करके तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द दा गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने।

साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दयालु है, उस ते भरोसा रखण वाले जन उसकी महिमा नूं जानण वाले इस लोक विच माण मरतबा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही गुरसिख सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। आप बीड़ बाबा बुढ़ा जी स्थान ते काफ़ी समा विचरे। इतिहास अनुसार माता गंगा जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे महल साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की प्रेरणा सदका बाबा बुढ़ा जी पास बीड़ बाबा बुढ़ा जी विखे पुजे। आप जी दे मन विच संतान प्राप्ति की इच्छा सी। आप जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं अरदास करन वास्ते बेनती कीती। बाबा बुढ़ा जी नूं अकाल पुरख ते पूरन भरोसा सी। आप जी ने अरदास कीती ते परमात्मा ते भरोसा रखदे हुए माता गंगा जी नाल सहजे ही बचन कीते। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह विखे माता गंगा जी दी कुखों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अवतार तारिया। पूरे गुरु ने बख्शिश कीती, अर्थात उस अकाल पुरख दियां दातां नित नवियां हन। साहिब मेरा नी

0: नित नवा सदा सदा दातार। सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दलेर सिंह जोश।
1: तनासरी महला पहला घर तीजा जप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहंग गुरप्रसाद। जीव डरत है अपना कैसों करे पुकार दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहेब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अनदिन साहेब सेवी है अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरां सद कुरबानै जाऊं रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा ना ही कोई ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुदबाज प्यारे केवर हाँ सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहाँ। दूजा ना ही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहाँ रहाओ। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई नानक तांका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम विटों बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। इस शब्द के उच्चारण करता गुरु नानक साहब जी हैं। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र अंग 660 ते सुभायमान है। राग तनासरी का पहला शब्द है। इस शब्द में चार हाओ के बंद आए हैं। पहला बंद है साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस पंक्ति विच गुरु साहब जी वाहगुरु जी की उपमा बड़े प्यारे शब्दों विच कर रहे हैं कि मेरा सतगुरु मेरा परमात्मा सदा ही नवा है। हुण एक सवाल पैदा हुंदा है कि नवा किसनों कहिंदे हन। जिवें कोई दुनियावी राजा जां कोई दानी रोज़ लोकां नूं धन जां अन्न अनाज देवे अते कोई लोड़वंद रोज़ ही आ के लैण वालियां दी कतार विच लग जाए ता राजा ये कह देवे तू कल भी आया सैं ते परसों भी आया सैं अज फिर आ गया है अज तेनों कुछ नहीं दिता जाएगा। पर परमात्मा ये नहीं कहिंदा। उस वास्ते तां ये है कि सब अज ही आए हैं। वाहगुरु जी एक नवें अवसर वाल सुभा वरतदे हैं कि सब पहली बार ही आए हैं। इस तरह ही मेरा साहब नवा है वो दिल खोल के दातां दे जा रहा है। मेरा मालक सदा ही बख्शां करदा रहिंदा है पर वो मेरे नित दे तरले सुन के अकदा नहीं। बख्शां विच नित इउं है जिवें पहली बारी ही बख्शिश करन लगा है। इस शब्द की आरंभता तो पहला संपूर्ण मूल मंत्र आया है इसलिए सब तो पहला असी इस दे अर्थ जानना करांगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपहंग गुरप्रसाद। अकाल पुरख एक है जिसका नाम होंद वाला है जो सृष्टि का रचनहार है जो सब विच व्यापक है भय तो रहत है वैर रहत है जिसका स्वरूप काल तो परे है जो जूना विच नहीं आउंदा जिसका प्रकाश अपने आप तो होया है अते जो सतगुर की कृपा नाल मिलता है। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। जगत दुखां दा समुंदर है इन्हां दुखां नूं वेख के मेरी जिंद कंबदी है क्योंकि परमात्मा तो बिना होर कोई बचाण वाला दिसता नहीं जिस दे अगे बेनती कर सकां। सो मैं होर आसरे परने छड के दुखां दे नाश करन वाले प्रभु नूं ही समर्दा हाँ। वह सदा ही बख्शा करदा है भाव दातां दिंदा है क्योंकि ददा दाता एक है सब को देवनहार देंदे तोट ना आवई आगंत परे भंडार। वाहगुरु जी सारे संसार दे जीवन नूं पैदा करके संभाल भी आप ही करदा है। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। जिस दिन माता गंगा जी बाबा बुढ़ा जी दी बीड़ विखे पहुँचे सन ते बाबा जी नूं मिस्से प्रशादे छकाए सन बाबा जी ने लंगर छक के अरदास करदियां ये बोल कहे सन हे माता जिमें तू मैनू भोजन छका के प्रसन्न किया है उवें ही वाहगुरु जी भी तेनों भी प्रसन्न करनगे। गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे करता इस साखी नूं अपने ग्रंथ विच इस तरह बयान करदे हन। बोले बड़ उ

0: रैण दिनस प्रभात, तू है ही गामणा, जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यामणा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा।
4: हां जी।
5: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां घर आ जावांगे। हां
4: क्यों? पर मैं
5: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ।
4: ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ?
5: 1,00,000 ਦਿਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ।
4: ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ?
5: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 30,000 ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
4: ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
5: ਓਏ,
4: ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕ, RBI ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
6: ਹੈਲੋ ਮੰਮਾ।
4: ਹਾਈ।
7: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
4: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगा हर्ट्स फाजल का, FM बैंड 100.9 मेगा हर्ट्स कसौली, ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इन्ह मीटरां ते तुसी शाम 6:30 ऑस्ट्रेलिया ते वैसट इंडीज़ दियां टीमां दरमियान खेडे जा रहे ICC वूमेनस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दा पहला फाइनल मैच दा आखी डिठा हाल सुन सकोगे। अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे साडे वेव ऐप दे राही। हुण इस वेले शाम दे 6:20 होण जा रहे ने, बेला हो रहा है प्रादेशिक खबरां दा। एक बार असीं तुहानूं फिर जानकारी दे दिए कि मीडियम वेव के सारे चैनल्स के उत्ते तुसीं शाम 6:30 क्रिकेट की कमेंट्री सुन सकोगे, तो बाकी सारे साडे प्रोग्राम तुसीं वेव ऐप राही सुन सकोगे। हुण सुनदे आं प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेतीबाड़ी खेत्र दे विकास तो बिना विकसित भारत का सुपना साकार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब संबंधी अज पंजाब मोबाइल डॉक्यूमेंट्री वैना नूं कीता रवाना। संगरूर विच ओलंपिक पद्धर दे

0: दुनिया दे उपमा होरू गंगा दे लाल दी बोले ओ ब्रह्म ज्ञानी
1: पापां दा नाश करेगा पापां दा नाश करेगा सत दा प्रकाश करेगा जिंदगी।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जी हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, प्यार दा गीत भी है और गम दा सागर भी है। यानी कि दोनों चीज़ां सानू जिंदगी दे विच एक्सपीरियंस हुंदियां ने। कदी तां सानू खुशियां आके घेर लेंदियां ने, आसे पासे सुख ही सुख नज़र आंदे ने, उस वक्त ऐदा लगता है कि बस जिंदगी इन्हां सुखां दा ही नाम है, इन्हां खुशियां दा ही नाम है, इस नच्चन टप्पन दा खेडण दा नाम है। लेकिन जिद्दां ही वक्त बदलदा है, जिंदगी अपनी करवट लैंदी है, तां दुख जदों घेरदे ने तां उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ यही महसूस हुंदा है कि जिंदगी सिर्फ दुखां दा नाम है, जिंदगी सिर्फ मुश्किलां दा नाम है, जिंदगी सिर्फ परेशानियां दा नाम है, होर इहदे विच कुछ नहीं। लेकिन वो वक्त भी बदलता है, जिंदगी दरअसल बदलाव का नाम है। कभी सुख आते ने, कभी दुख आते ने, कभी दिन है, कभी रात है, कभी खुशियां ने, कभी गम ने, यानी कि उतार चढ़ाव जिंदगी दे विच लगा ही रहता है। तो आओ जिंदगी की एक होर डेफिनेशन सुनते हैं इस गीत के जरिए।

जी हाँ, जिंदगी एक प्यार का नगमा है, यानी कि एक गीत है, एक संगीत है, एक साज है, ताल है, और नाल ही नाल की जिंदगी कहानी है। तुहाडी कहानी वक्री है, मेरी कहानी वक्री है, किसी होर दी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि दुनिया दे विच असी अरबां खरबां लोग जड़े ने ओ रहने हाँ, और सब दी कहानी वक्खो वक्री है। किसी दी भी कहानी बिल्कुल हूबहू किसी दे नाल नहीं मिल सकती। और तुसी देखो कि रब किन्ना वड्डा कहानीकार है कि सब दियां कहानियां वक्रियां वक्रियां लिखियां होईयां ने। हाँ, हो सकता है कि कुछ इंसीडेंट मिल जाण, कुछ सिचुएशंस या कुछ हालात साडे इक्को जिहे हो सकदे ने, लेकिन कहो कि बचपन तो लै के और मरदे दम तक इक्को जिही कहानी दो इंसान इस धरती दे उत्ते जी के गए ने, तां बिल्कुल नामुमकिन है, इदां हो ही नहीं सकदा। लेकिन जिंदगी जिहड़ी है ना, ओ सिर्फ और सिर्फ खुशी नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि जेकर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सुखां नाल या खुशियां नाल भरी हुंदी ना, मतलब किसी भी इंसान दी, तुसीं कहो कि नो बडी इज़ परफेक्ट, किसे नू किसे न किसे चीज़ दी कमी रह ही जांदी है, जिंदगी अधूरी रह ही जांदी है, पूरी जिंदगी कदी किसे दी नहीं होई। इस दा एक परफेक्ट एग्जाम्पल यह हैगा कि अगर तुसीं किसे नू भी पुछ के देख लो कि क्या जड़ी जिंदगी उन्हें हुण तक जी है, जेकर उन्हूं मौका मिले कि यही जिंदगी दोबारा तू जीनी है, दोबारा तेरा पुनर्जन्म होएगा और दोबारा तू सेम यही नाम, यही शख्स, यही तेरे सारे रिश्तेदार, यही आस पास दे लोग, तेरे आंढ गवांढ ओही काम, यानी कि हर चीज़ सेम होवे। जिदा आपां एक फिल्म दी कॉपी दूजी फिल्म आपां देखदे हां कि रीमेक हो जांदे ने, सेम स्टोरी हो जांदी है, हर चीज़ सेम हुंदी है, ते क्या असीं किसे इंसान नूं इन्नी गल कह सकदे हाँ कि जिहड़ी जिंदगी उन्हें जी है, जिहड़ी स्टोरी इस वक्त उसनू मिली है, वो डिट्टो तैनू दोबारा फिर मिलेगी और क्या वो राजी होएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आज तक जिन्हां नूं भी यह सवाल पूछा है ना, कोई कहिंदा कि नहीं, जो जिंदगी मैं हुण तक जी है, मैनू वो जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए, कुछ नवा ही चाहिए, कुछ वखरा ही चाहिए। यानी कि कहानियां सब दियां वखरियां वखरियां ने, सुख दुख हर एक दी जिंदगी दे विच आउंदे ने, तां परफेक्ट कुछ भी नहीं है। आओ एक होर जिंदगी दे उत्ते गीत सुनदे हाँ, जो जिंदगी दा एक नवा नज़रिया पेश कर रहा है।

जी हाँ, इस गीत तो सानू यह भी पता लगा कि जिंदगी एक खेल भी है। कोई पास हो जाता है तो कोई फेल हो जाता है, कोई जिंदगी दे मुश्किलां नू पार कर जाता है उसनू असी खिलाड़ी मान लैंदे हाँ, तो जिहड़ा जिंदगी दियां मुश्किलां तो हार जाता है वह अनाड़ी कहलाया जाता है। यानी कि हर दिन हर पल हर घड़ी जिंदगी दा एक खेड चल रहा है। कदी असी जित जाने हाँ और कदी असी हार जाने हाँ, ते जितना हारना ता उम्र लगा ही रहिंदा है। कुछ सिचुएशंस जदों असी साडे मन दी मर्जी पूरी हो जाती है, जो असी सोचिया हुंदा साडी चाहना जिहड़ी है वो साडे अकॉर्डिंग वो हो जाती है, उसे तरह दा असी खुश हो जाने हाँ और सोचते हाँ कि वाह जी जिंदगी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है किन्नी वधिया है। लेकिन जदों साडियां बहुत वधिया कीतियां हुई प्लानिंग्स भी फेल हो जांदियां ने ना, उदों इंसान हाथ खड़े कर दिंदा और उदों यही सोच

सोचता है कि नहीं, ज़िंदगी मेरे कंट्रोल विच नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैं सोचा, जिस तरह मैं चाहया, बिल्कुल ज़िंदगी उस तरह नहीं कर दी, तो मेरे हाथ विच कुछ नहीं है। उस वक्त इंसान नू इस चीज़ का एहसास हुंदा है कि यह खेड कोई होर ही खेड रहा है मेरे नाल, मेरे हाथ दे विच ना कोई चाल है, ना हार है ते ना जित है। आओ जी अगला गीत सुनते हैं कि यह ज़िंदगी दे बारे की कहिंदा है।

ये है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबां, और कुछ ज़िंदगी नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ प्यार दा नाम है। कि अगर कहिंदे कि तुसी कल्ले रहो तां वी आनंद दे विच रहो, और जेकर तुहाडे कोल कोई आके बहिंदा है, तुहाडे नाल कोई गल करदा है, तां सिर्फ उस दे नाल प्यार दे नाल गल करो। तुसी सिर्फ और सिर्फ प्यार वंडो जिन्ना प्यार वंड सकदे हो, क्योंकि ज़िंदगी दा कोई भरोसा नहीं कि जिहड़ा इंसान अज तुहाडे कोल बैठा है वो कल नूं तुहानूं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस दी कोई गारंटी नहीं हुंदी। इस करके जिंदगी दे विच जिन्हों भी तुसी मिलदे हो बहुत प्यार नाल मिलो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसे तरह जिंदगी दे बारे, जिंदगी दे इस अनिश्चितता दे बारे कि इन्नी अनसर्टेन जिंदगी है, कुछ भी निश्चित नहीं है, उस दे बारे ये छोटी जी कविता है तुहाडे नाल सांझी करदी हाँ कि जिंदगी क्या है। कहिंदे कि किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं, जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। दिल से जुड़े रिश्तों को यूं ना गलत फहमियों का शिकार बनाइए, मन मुटाव की इस गांठ को इतना कस कर ना लगाइए, ये वक्त की रेत हाथों से पल में फिसल जाएगी, तुम आवाज़ लगाते रहोगे और वो बहुत दूर निकल जाएगी। इस करके जिंदगी बहुत नाजुक है, तो इस दे नाजुकपन नू समझिए, ना ज़्यादा अकड़िए, ना ज़्यादा डांडे होइए, ना ज़्यादा सख्त बनिए। बहुत कोमल जिहा, बहुत नाजुक जिहा दिल सब दे कोल हैगा, ऐ नहीं कि साडा दिल नाजुक है, सब दा दिल नाजुक है, सब दा दिल सॉफ्ट है। तां कोशिश करिए कि किसी दा दिल ना दुखाइए। आओ जी, जिंदगी दे प्रति एक होर नज़रिया अगले गीत दे विच।

जी हाँ, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। मतलब जो सानू ज़िंदगी कई बार इहो जिहियां चीज़ां दिखा देंदी है, इहो जिहियां चीज़ां एक्सपीरियंस करवा देंदी है जिन्हां दे बारे तुसीं कदी सोचिया भी नहीं हुंदा, कदी ख्वाबां ख्यालां दे विच वी ओह विचार नहीं आया हुंदा, ओह थॉट नहीं आया हुंदा कि ज़िंदगी तुहाडे सामने लिया के एक तस्वीर, एक पिक्चर पेश कर देंदी है जिहदे विचों तुसीं गुजरना हुंदा है। तो ज़िंदगी नूं समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़िंदगी बदल रही है, बदलती रहेगी और बदलती ही आई है। आप देखते हैं कि वक्त हर चीज़ नूं बदल रहा है, चाहे साढ़े आस पास दे तुसीं देख लो, सड़कां होण या मकान होण या लोग होण, पहलां किद्दां दे सी और हुण किद्दां दे हो गए ने। ज़िंदगी बदल रही है, इसे ही बदलाहट दा नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी दी हर औकड़ मुश्किल तो असीं पार हो सकते हैं जेकर साढ़े अपणियां दा साथ होएगा। तो इसे दे नाल ही साडा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है ज़िंदगी हसीन है इत्थे ही ख़त्म हुंदा है। ऑन 8:45 होण जा रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां बाद तुसीं सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।

संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी

0: तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर

0: सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Sevatirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting

प्रोग्राम सरगमदा आखिरी नगमा फिल्म पगला कहीं का तुम आवाज़ मोहम्मद रफी दी गीत बोल हसरत जयपुरी दे ते संगीत शंकर जयकिशन दा।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਰਤਨਾ ਪਾਂਡੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के

0: विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building.

0: माई तू व्याह बारे पुछया?
1: हां पंडित जी।
0: पर पत्री कुछ एदा दसदी है, दड़वट जमाना कट बीबी, इत्थे भी काले माले ने।

0: बिल्कुल जी, जावीना जावीना मैं तो दूर। गीत जो करे करम जीतन मोल साहब की आवाज़ भी थे प्रोग्राम सका चल रहे जी, और दोस्त भी आ गए ने। हेलो,
1: हेलो सर, नमस्कार जी। थैंक
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सका दे।
1: यू, थैंक यू सरकार जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। होर सुनाओ की हाल
1: पूरा
0: चाल है।
1: प्रोग्राम सुना भी मैं साथ दवांगा भाई।
0: चलो बहुत शुक्रिया जी। ते हाल चाल किवें ने?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंजॉय करते जी।
0: चलो वधिया, प्रोग्राम एंजॉय करना चाहिए। तो गर्मी का की माहौल चाल है?
1: गर्मी बहुत आ रही है जी,
0: हाँ बहुत, वाकई गर्मी ज़्यादा हुई है पिछले 3-4 दिन तो, ज़्यादा गर्मी।
1: हेलो।
0: केड़ा गीत
1: हाँ
0: सुनोगे
1: जी,
0: अच?
1: हाँ जी, आप बिल्कुल बोल रहे हैं जी, दूरदर्शन में बैठ के मैनू अच्छी जानता तुझे।
0: मैं ऐसे करके नाम पूछया नहीं, वैसे पता लग जाता। हैलो करते हो ना, जो तुम दोस्तों पता लग जाता भी कौन गल कर रहा
1: हाँ जी, हाँ जी, फिर भी
0: हूँ।
1: दसना
0: नहीं नहीं ये जरूरी
1: चाहिए।
0: है, दसना जरूरी है जी। अपनी पहचान जिहड़ी है वो दस के बनती है।
1: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: ते बाकी
1: तो
0: बहुत वधिया सर, बहुत वधिया जी। ते केड़ा गीत सुना गया अज?
1: गाना बोलिया
0: क्या बात, वाकई गर्मी दे विच इस वेले हुण ते अंबियां जिहड़ियां पक्कण वालियां हो गईयां, अंब बन जाणे हुण। चलो बहुत शुक्रिया जी।
1: बिल्कुल
0: आहो वाकई,
1: बिल्कुल।
0: नहीं नहीं ये तो है जी, गर्मियां नूं हुण पेड़ां ते जिहड़े अंब पक जाणे आ। सो बिल्कुल ठीक है जी, कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करन जा रहा हूँ।
1: ओके जी, बाय
0: थैंक
1: बाय।
0: यू जी, थैंक यू।

0: के पहुंचा।
1: गीत जी मेरे मान योग सुपरिस्ट कलाकार उगे लोग है जी, कलिंगा दे बादशाह श्री कलीमान साहब का समाधि ट्रक बनिए जी, जे
0: क्या
1: थोड़ा हुक्म होवे माड़ा हुक्म दवा दा जी मैं।
0: मैं कह जी, असी कौन होंगे हुक्म करने वाले, तुसीं बिल्कुल गुनगुना के सुनाओ जेकर तुहाड़ा है दिल ते, आपां अज पूरी कर देनी तुहाडी ख्वाहिश। गीत सुनाओ तुसीं।
1: क्या बात है सर जी, क्या बात है जी,
0: बिल्कुल
1: हर
0: आण
1: एक बंबे हो पठान कोट जावे
0: वाह है
1: यार, ट्रक बन लिए
0: वाह
1: रोड पे।

तेरे नाल दो कड़िया ने असाने हसके जी पर चौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लिए तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी।

तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। गुरबाणी दे इस फरमान तो पाव है कि सिरजनहार प्रभु सबना दी प्रतिपालना करता है सबना दा साई है सारे जीव उसदे आसरे ही हन वो प्रभु सदा सृष्टि दे जीवां नू पालदा है ये अकाल पुरख दा बिरद ही है क्योंकि ओ मेहर करन वाला है सबना दा साहिब है दयालु है सबना जीवां नू प्राण उसे ने ही बख्शे हन तो फिर ए जीव तू क्यों डोलदा है तेरी रख्या करन वाला उही है जिसने तैनू साजिया है जिसने तैनू पैदा कीता है उही तैनू आसरा भी दिंदा है जिसने इस सृष्टि दी उत्पत्ति कीती है उसने ही तेरी सार लेनी है। ओ परवरदिगार प्रभु हर हिरदे विच व्यापक है उसकी सिरजन शक्ति दा कोई अंदाजा नहीं वो सब तो वड्डा है ते बेपरवाह है इस करके ए बंदे जिन्ना चर तेरे स्वास हन उससे दी ही बंदगी कर। हे प्रभु तू सर्व कला समर्थ है कथनी तो परे है इंद्रिया दी पहुंच तो परे है ए जिंद प्राण तेरी ही दित्ती हुई रास पूंजी है। हे प्रभु तेरे अग्गे यही अरदास है कि तेरी रहमत सदका ही मैनू आत्मिक सुखां दी प्राप्ति हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 724 ते तिलंग राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दा कथन है तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार जिन पैदाइस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया है भाई मेहताब सिंह ते उन्हां दे राग

तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सृजनहार, जन पैदायस तू किया सोई दे आधार। इस शब्द का गायन किया सी भाई महताब सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख का मुढ़ कदीम तो ही सुभा है कि वह सबना का माँ प्यो होण करके सबना की सार लैंदा है। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, वो प्रभु ही सबनी थाई रख्या करन वाला है। मन विच विचार आउंदा है कि वह प्रभु किस स्थान ते वसदा है। बाणी विच फरमान है कि सत संगत साध संगत ही प्रभु का निवास स्थान है, क्यों जो साध संगत विच संत जन प्रभु प्यारे भगत साध संग करते हैं, ते करता भी उत्थे ही वसदा है। मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु वसै जियो। प्रभु ते पूरन भरोसा रखने वाले भगतां दा अकाल पुरख ही सहाई है, राखा है, उन्हां दी रास पूंजी दी रख्या भी करदा है। ऐसे भगत संत जदों गुरु अगे कोई भी अरजोई करदे हन तां ओह परवान हुंदी है ते उन्हां दी इज्जत पद दी राखी

काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख विसारण हार। इस शब्द का गायन किया सी भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया न कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाई, गुर बिन मुक्त न होए, गुर ना

जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बिचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछा जाकी शरणं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी।

संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन जिन्हू बात निश्चल त्रु जानी तई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक में जलहार बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर।

0: राम रवण दुर्त दवन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवांद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम कर्म मच्छ कच्छ हु बराहा जमुना कैकूल खेल खेल्यो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गयांद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
1: श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्र अह निस बसर होए कल्याण लह परमंगत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों साड़त हो हुमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गेहो त्रेहे स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा सेउ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार हिये धार तज विकार मन गए अंदो श्री गुरु सत जियो।

जन्म मरण दुख हुए सिफ तक संबंधी नूर अरसों पुरसों तुद डिठे सच्चे पातुसा मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे

उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमानी, जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, जो पिता पूत किरपाला। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, जो पिता पूत किरपाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, कर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किस हौ जाची किस आराधी, जा सब को कीता होसी। जो जो दीसै बड़ा बडेरा, सो सो खाकू रलसी। निरभउ निरंकार भव खंडन, सब सुख न

हाय दीवाने को कलमे का हवा तुम मेल धर ले लेखा फिर छुटे नानक तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तैतारिये देखे की ताया।